0: सड़क को विषय
1: बनी अ स्थिति हेखी तो बहुसंख्यक मुद्दा छोड़ने पर्च भाई भोलि कार्यक्रम में तीन दिन सकें तो हिंदा अब सचिवालय को बैठक में आप उपस्थित तो थी तर मैं कई नेता के सुनेकु जैसे बाहर जसरी आए नि बहुसंख्यक नेता छोड़ने पर्च भाईजना भाई भाई
2: भाई कभी
1: आए तर तो होने सत्य क्योंकि के कुरा में मैं भेजे कुरा में छलफल भग रहे यथास्थिति में पार्टी फेरी रिभाइव कर कठिन कुने न कुने रूप में हमें राम संदेश दिवस जनता में जागरण को संदेश दिवस एमआरए अलिक अब नया ढंग ने जाने कुने न कुने मैसेज दिवस भूरा को आम बुझाई हो तर तो केपी ओली सहित को कि केपी ओली बाहेक को भाई कुरा में अब केन्द्रीय कमिटी में क्या छलफल विषय
2: तर केन्द्रीय कमिटी भाग अगर सचिवालय बैठक में मैं छोड़ू पूरा सुधार दिए जसरी भूम र जिसको नेतृत्व में कार्यक्रम बनाइए तो नेतृत्व करने व्यक्ति

यो बा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मध्य दुधकोशी समावेशी विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मध्य दुधकोशी को समृद्धि मध्य दुधकोशी गांवपालिका समिति के सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्रो बुधवार सांज 7:30 देखि 8 बजे समय सूर्य एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज अनलाइन और सूर्य एफएम को 23 मार्फत विश्वभर सुन्न सकूने।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उत्कृष्टता को मिलन चित्रमा
2: हुंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रवृत्ति उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
3: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुङ्गा र खोटाङ को डिक्टल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जिनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनुका साथै सर्भिसिङ सेवा
3: एक्सपेन्स गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिङ गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
3: ओखलढुङ्गा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस टाली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारी डिजाइन ओखलढुङ्गा
2: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852880022 र 9842880300

सरकार विज्ञापन बोर्ड न्यूज़चार कलरिया तथा सोलामाई अपसेट प्रिंटिंग प्रेस सुनोद कुंडी नगर पालिका पास सलेरी स्कूल खुम्बो विगत देखने ग्राहकों को विश्वास हित्ती आयको न्यूज़चार कलरिया तथा सोलामाई अपसेट प्रिंटिंग प्रेस थप सेवाहरू का साथ में सबै सुन्दा हमरा सेवाहरू वेस संबंधी संपूर्ण काम किताब कैलेंडर ब्रोशर बिल मीटर पैड रजिस्टर विवाह कार्ड फ्लेक्स प्रिंट बोर्डिंग बोर्ड फोटो जर्सी प्रिंट गाड़ी तथा बाइक को नंबर प्लेट छपाई गई साथ ही स्टेशनरी का सामान होलसेल मूल्य में पाई दिव्या कंपनी को एलईडी बल्ब पावर सकेट पैनल लाइट ट्यूबलाइट प्रीमियर कंपनी को सब खाल तार पाई सीजी कंपनी का संपूर्ण सामान कंपनी के मूल्य में बिक्री वितरण गरिदै आएको छ सीजी कंपनी को फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मशीन माइक्रोओवन मुहाउने गीजर गैस सिलो भैक्यूम तथा किचन को संपूर्ण सामान उपलब्ध छ एलईडी टीवी कंप्यूटर लैपटप कलर प्रिंटर फोटोकपी मशीन झ्याल ढोका में लगाउने मोटो तथा पातलो रंगीन सीसा फोटो फ्रेम होलसेल मूल्य में बिक्री वितरण गरिन्छ हार्डवेयर का संपूर्ण सामान काटी कब्जा छेस्किनी तालछा वाल मिक्सर मोनी सावर बेसिन धारा कमोट पेन सेट पीवीसी पाइप सीपीवीसी पाइप पाइन का साथ ही फ्रीज डीप फ्रीज वाशिंग मेसिन कंपनी के मूल्य में पाइन्छ अनि यी सब मरम्मत गरिन्छ र ग्यास वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग साथ ही बाइक को ट्यांकी कलर पनि गरिन्छ यति मात्र होइन सल्लेरी बस पार्कमा रहेको न्यू स्टार

0: 参考にしましてください。
1: Sucana, Sucana, Sucana. Sulung jinvi sucana, sarasi nirman karya. Hal sulung chutrabata sansaran bhirai kosha. Nirman karya ka krama, maakhili sulung bata bhira khasni samjhavana rai jali. Tanma khira sadan chutrama, nastad kakna, gai bastu charauna katha, avajjavad dani, pura istani basi katha, sarva sadaran bhirai. Sabu dhani apnauna huma, isi sucana maakhat anurod gari isha. Kripaya, अनावश्यक रूपमा नजानु होस् र आफ्ना बाल बालिका तथा चौपायालाई समेत सुरक्षित राखिदियोस्।

0: ट्रांसफर विज्ञापन बोर्ड
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखरिजुंगा को मिलन चुकिया
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रवृत्ति उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भद्र
3: अफरोड का
2: उपयुक्त BS6 तथा नया नया वर्षन

0: टोलू एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: Soundcheck. Sony FM. Studio time.
2: Welcome.
0: I'm Jake Kusatma, New Star Digital Color Lab, Tata Dwaramai Offset Press, Solu Dutu Nagarpalika 5, Solu Kumbu.

0: राज सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा। होंडा का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरगर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी। ओखलढुंगा र खोटाङ को डिजिटल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुक मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विस सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बुकिंग करी भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने।
2: ओखलढुंगा को आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस ट्राली सिद्धिचरण नगरपालिक 11 गुरुमारे भिजाई
1: संपर्क नंबर 0375902222 9852888022 98 42 80 30 00।

0: इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यो कलेज ने विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभा पहचान करी उजागर कर मदद करते न्यूनतम शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासुन वर्ल्ड कॉलेज साबुन सुसीपाती संपर्क नंबर 9803623 82 9803623 87
1: पक्षी गरा में भर्ना होने संबंधी सोलुखुम्बु बहुमुखी कैंपस को सूचना
2: विगत 34 वर्षदेखि उच्च शिक्षा को क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान संचालन और व्यवस्थापन करते आई साथ ही योगी दक्ष एवं अनुभवी शिक्षक द्वारा अध्यापन भईरिक सोलुखुम्बु बहुमुखी कैंपस में एसई शैक्षिक सत्र 2083 कक्षा 11 में भर्ना भईरिका सबैलाई एसई सूचना मार्फत जानकारी कराइन
1: भर्ना कार्यक्रम में होने नीति
2: भर्ना म्याद यही सीट 17 गति देखि असार 15 गति समय कक्षा संचालन 2083 साल असार 16 गति देखि रजिस्ट्रेशन फार्म भरने म्याद 2083 साल असोज 20 गति समय पढ़ाई हुए समूह कंप्यूटर साइंस समूह कानून समूह व्यवस्थापन समूह मानविकी समूह शिक्षा शास्त्र समूह कानून समूह में 30 जना र कंप्यूटर साइंस समूह में 40 जना भर्ना लिने थप जानकारी को लागि संपर्क नंबर 9855 10 55 9812 63 53 130 9842 84 87 75 संपर्क कर सकूने
1: उद्धव कुमार शर्मा कैंपस प्रमुख सोलुखुम्बु बहुमुखी कैंपस कल्लेरी सोलुखुम्बु